0: सत जुड़ गया, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम।
1: वेस्टा विजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पेश कर देने सरब सांची कुर्बानी।
2: सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार, जाके

자승의 주여, 이 라가 압사람을 가르려 하오 가우리 제티 그루간사 마하라이다 라가 하이 और कबीर साहब ने भी इस राग विच ही कृपा कीती है। बड़े प्यार नाल गौड़ी चेती गुरु ग्रंथ साहब का राग है, बड़े प्यार नाल सुनी है। और जो इसका ताल है वो 15 मात्रा है।

सरदा मन की पुए प्रभु मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जानदा है। जीव दे मन अंदर की है, मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की है, परमात्मा जानता है। जिदे अगे आप असी शीस नवाने ना, वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की, वो चाहता की प्रभु मेरा अंतर जामी जान। मेरा प्रभु जानता है, अंदर की बुझ लैंदा है, देख लैंदा है कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया, अज की मांग है, अज इसनू की चाहिदा है। जो भी चाहिदा है वह सतगुरु देंदा है। क्यों?

मानुक अब माने प्रभु मेरा अंत जामी जान। वो प्रभु सब कुछ जान साहब आख देने जी की बिरथा होए सो गुरु पे अरदास कर। जे तेरे मन अंदर कोई पावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर, ओ गुरु पावनी पूरी कर देवे, खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा। क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है, इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए, जो खाली चोली आए ने पर के गए ने, जो रोंदे आए ने हंसते गए ने, ये तो दरबार ही ऐसा है। कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक हो जरा। जे गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार अंदर शीश की मंग हुई तो शीश पेटा दे दिता गया है, ऐसा दरबार कोई? सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे, चोली विच दान पा दिता जावे, उस दाते दी दरबार च आए। जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकता। आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नणमंग कर ली ते प्रभु कड़ा है, प्रभु मेरा अंत जामी जान, तू करता सब किछ जानदा। गल भी करनी आउंदी होनी चाहिए, दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए, दान मिल जांदा है। आके कही तू करता सब किछ जानदा, तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए, मेनू की लोड़ी दे, मेरे मन अंदर इच्छा की है, मेरी भावनी की है, तू परमात्मा जानना है, तेनू दसन की कोई जरूरत नहीं।

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन न कर, मुझ में गुण है। और मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता।

सत्य बलवंडे ने भी हंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

पावन बाणी का कीर्तन आप जी सुन रहे हो। कुछ चुनवे शब्द मैं थोड़ी सेवा पढ़ने हाजिर होया। गुरु गोविंद सिंह जी दस रहे कि मेरा नाम गोविंद सिंह है और मैं शस्त्र का खिलाड़ी हूं, शस्त्र का पुजारी हूं। मेरा जो वाहिगुरु है वो शस्त्र है और शस्त्र तो बिना मैनू होर किसी का आसरा नहीं। इसलिए मैनू यह भरोसा है जिस दे कोल शस्त्र है और जिस दा शस्त्र दे उत्ते पूरा कंट्रोल है, यानी पूरी आराधना जिसकी शस्त्र दी, उसकी कदे भी हार नहीं हो सकती। आज तू ही जग वीर, तू ही निशानी जीत की। ये जो शस्त्र है, जो शस्त्र का खिलाड़ी है, शस्त्र का पुजारी है, शस्त्र की जो पूजा करता है और शस्त्र नूं चलाउणा जानता है, उसकी जंग विच हार नहीं हो सकती और सदा ही अकाल पुरख की कृपा द्वारा उसकी हर मैदान फतेह होती है। यह गुरु गोबिंद सिंह का मुख बात। और नाल उन्होंने एक गल होर दसी, उन्हें कहा मैं सिंघां नूं पंज प्रकार की रहत दिती है ते रहत दे नाल पंज शस्त्र भी दिते हैं। वो रहत की है और शस्त्र की ने, उन्हां दी मुख वाक बाणी तुसीं श्रवण करो। गुरु साहिब

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पानी विच रहे, फिर भी उसके हुक्म विच रहे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बाणी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे, ते फिर समा आ बने। जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नू जाके आख्या के असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है, ता चंदू दीवान जिस नू अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाले जदों कुबोल बोले कुबोल बोले ते एक गल संगत नू पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी गरीब निवाज, इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तो मेरी बड़ी बेदबी कीती है ना, गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतरजामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, गरीब निवाज किथे तुरे हो? आख्या, बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं, किसे जरूरी काम नू चले हैं। ता बाबा बुढ़ा जी ता ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहिब जी, ता की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे होए। पुब्बां निकलियां बाबे बुड्ढे दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरां मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

मिला श्रीधर बिनवंत नानक बिनवंत नानक बिनवंत नानक नानक बिनवंत नानक मिला श्रीधर सगल आनंद रस बनी।

मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए। जिस तरह अमली अमल तो बगैर नहीं जी सकता, नीर कहंदे ने पानी, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती। इसे तरह हे परमेश्वर, मैं तेरे तो बगैर नहीं जी सकता। धन गुरु नानक साहब का यह पावन शब्द आओ आप सारे प्यार नाल पढ़िए सुनिए, और जैसा प्यार सतगुरु जी अपने मन का दसते हैं, ओह जिहा प्यार असी भी अपने मन में लै

रथे गए भाव जिन्ना ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया वो सारिया नू चंगे लगते ने क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

दरख्त होवे, छां वाला, फलां वाला, आंदे जांदे राही दिओ दे थले बैठ के आनंद माणदे हन। उड़दे हुए पंछी भी उस दरख्त ते आके बैठते, क्योंकि सुख मिलता है। ते जिहड़ा साहिब है, प्रभु है, ए भी एक रुख है, पर केड़ा अमृत। इस दरख्त का नाम है भाव। जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने, सुख मानते ने, इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने, ओ प्रभु दा नाम जप के, अमृत रूपी नाम जप के अपना जीवन

बस है अभियाना शब्द जदों मैं आपा सुनी ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर पटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर दी निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे आंदे नाल वसदा है ओदी निगाह तों

देखा दिहाया क्यों लहे जा सर पी दरबार। कुछ सरोवर आपां बार धरती ते देखते हैं पर एक अमृत दा सरोवर इंसान दे अंदर भी है। तो साहब जी बयान करते हैं जेड़ा ते प्रभु नाल जुड़ जाए ओदी तृष्णा खत्म हो जाती है क्योंकि सब सुखदाता राम है दूसर नाहन कोई। जे सारे सुख नाम विच ने फिर जेड़ा नाम नाल जुड़ जाएगा वो भुखा किवें रह सकदा है वो त्याया किस तरह रह सकदा है। पर लोड़ है परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दी ओदे नाम रूपी अमृत।

श्री गुरु नानक देव जी महाराज बयान करते ने, है परमेश्वर मैं तेरा बाणिया हां, तू मेरा साहिब है। साध संगत आज दे इंसान कुल चार पैसे आ जाए, कोई थोड़ी बहुत ताकत हो गई, वो समझदा है कि मेरे वर्गा हूं कोई नहीं। यह जड़ी मैं है, एहो इंसान नु चैन नाल नहीं बैठन देंदी। अज हर इंसान दुखी है, चाहे वह गरीब है, अमीर है, कोई राजनीतिक है, और यह भी देखे है कई धर्मी भी दुखी ने, क्योंकि नाम रखवाण दे नाल कोई धर्मी नहीं हो जाता। जदों तक मन विचों हौमे नहीं जाती, उदों तक इंसान सुखी नहीं हो सकता। हौमे की है? मैं जो कहना ठीक है, जो मैं कह रहा वो ठीक है, जो मैं कर रहा वो ठीक है, बस ये मैं इंसान।

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जद इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

और जिन्ना ने इस प्यार नु जान लिया उन्हां दा जीवन दुनिया दे राग रंगा तो उत्ते हो जाता, क्योंकि साहिब जी बयान करते हैं जिन्हां ने नाम दा रस पीता उन्हां नु दुनिया दे झूठे रसां दा फिर मुताज नहीं होना पैंदा। आओ विचार करिए, जो इस शब्द की भावना है, जो इस शब्द विच प्यार है, उस प्यार वल आपा अपना मन जोड़ी रखना है और विचार करिए कि जिन्हां ने प्यार किया उन्हां दे मन की तड़फ किस तरह दूर होती है और किस तरह उन्हां नूं

हों वारी वन जा खनिए वन जा तौ साहिब के नावी ऐ परमेश्वर मैं तेरे दुवारी तेरे नाम तू कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान कर दे आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चली गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे बैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नू मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए

फिर तानू गले लग के मिले तेनू गलना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे दिए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा है। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए तां बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते। इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए ते ने पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजा दियां डारा पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राम गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब होए। ऐ बादशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी से लंबे पे। एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे रायपुर की तलवंडी का राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पे ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने हिस्सा दिलाई सत करतार ए सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंढ ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे आ तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब। माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी दे कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग घुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते। पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लईआं, कहन लगे ना भैण तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ए नहीं हो सकदा। सात संगत, ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है तां कि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा। चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जेड़ा चंगा पति ना बन सके, चंगा पिता ना बन सके, जेड़ा चंगा पुत्र ना बन सके, जेड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके, सात संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकदा साथ संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ए वखरी गल है इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने आ हुण तुसीं जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछते ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ओही जानदा है जिसने ए प्यार कीता है भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पर आई जांके अंदर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब कहते ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले वीर कि यह प्रेमा भगती दे वीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने